0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: California.
1: Extreme energy drink.
2: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
3: सब्सक्राइब नाउ एन्ड प्रेस द बेल आइकन.

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम बैले थोप्लो सात मेगा हर्जबाट म बद्र प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन् 2026 अगस्त 25 तारीख भाद्र 9 गते मंगलबार द्वादशी शून्य घड़ी 8 पला अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी

राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन सम

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पिता महादेव, हरि हरि सदाई भरि भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भरि भक्ति गरौं है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुमारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव, हरि हरि सदाई भरि भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भरि भक्ति गरौं है, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन छोडेर नजाऊ हो रुन्छन् मेरो मन, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन